वो जाना चाहता है और वो चला जाएगा, पर बात तो वही रहेगी ना कि मैं उसे जाने दूँ या बस थोड़ा सा और इंतजार।

0: यो हो शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
1: भाषाले संस्कृतिको मौलिक छाप कला।
2: शुक्ला

0: काजिस चिया लिएर आऊ। चिया चिया
1: काजिसलाई चिया भन्ने हिरो भइसक्यो केटो। ओ स्पोर्ट चिया दियो
0: ल।
2: के खाले मान्छे रहेछ
0: डिरेक्टर साहब। कति हेर हो मेरो टेप
3: नायक ज्यू। सुटिङ त प्याकअप भइसक्यो त। नयाँ भाइले एकदम राम्रो गरिरहेछ। तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्। ल है त
0: डिरेक्टर साहब।
4: चिया न चिया म पनि जान्छु अस्ट्रेलिया।